0: पत्थर रखाई बाबे बुड्ढा साहब तो नी पत्थर रखाई
1: हो बाबा बुड्ढा साहब तो नी पत्थर रखाई हो बाबा बुड्ढा साहब तो नी पत्थर रखाया।

माया ममता मोहनी जिन बिन दंता जखाया मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिनी सच नाम जित लाया बिन नाम जग कमला फिरे बिन नाम जग कमला फिरे गुरमुख नजरी आया धंधा करदिया निष्फल जन्म गवाया सुदाता मन न वसाया नानक नाम तिना को मिलिया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यो कसूरी मृग ना जाना परमदा परम पलाया अमृत ताज बिख संग्रह करते आप खुआया गुरमुख विले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया रसना हर साध आया शब्दे ही ना उपजै शब्दे मेल मिलाया बिन शब्दे सब जग बोराना बिरथा जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सोहरपुर अगम है को कित बिद पाईया तिस रूप न रेख अधिष्ठा कहो जन क्यों त्याईया ननका निरंजन हर अगम क्या कह गुन गाईया जिस आप जाए आप

0: गुरपुरा देखा लिया, गुरु सेवा पाइया, वाहिगुरु जी का खासा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोट महला पंजेवा, गुर का शब्द रखवारे, चौकी चो गिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम लजाय कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। नानक प्रभ वनासी, ताकि सेवन बिरती जासी, आनंद करह तेरे दासा, जा पूर्ण हुई आसा। बिलावल महला पंजेवा, ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरण आई, जो गिरद हमारे, राम कार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटे जिन बणत बनाई, राम नाम औ खुद दिया काली वलाई रहाओ। रख लिये ते रखण हार, सब ब्याध मिटाई, कौ नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। सलोक जय साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत, ना हो ना तू नह छुट है निकट न जाइयो। दूत सलोक महला पंजेवा, मन में चित बो चित बनी, उदम कर उठ नीत, हर कीर्तन का आहरु, हर देव नानके मीत। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्त आखिए करते का हुई विचार, तित कर गाव सोहला सेवर हो सृजनहार, तुम गाव मेरे निर्भौ का सोहला, ओ वारी जित सोहला।

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। त्रिलोचन सिंह जी, हाल दे अंदर आन की कृपालता करोगे?
1: ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਖੜੀ ਹੋ।

समरथ अगम पूर्ण मोहे मया तार अंधकूप महापयान नानक पार उतार। अमया दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल सदा सुख मन वस दुख संसार है खोवै

अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हुए सिफत खसम दी नूर अरशों कुरसों चट्टी तुद डिठे सच्चे पातशाह।

हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुर अपने गुर को बल जाइया। आए मिल गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ। हर के गुण हर भाम दे से गुरु ते पाए।

हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ध्याएं दे ते जन परवाना,

दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए।

करी जे तीसरठ उपाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई

अहंकार असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख मूर्ख अंध घोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सिर करह भार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो।

जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखा कीता अपना जिव तिस दी वडियाई।

हैं, सर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अभूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, चूज हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अल्लाह हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसरीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अभूत हैं, अशूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगाह हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं,

तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं पूर्णासी अनुपे अरूपे समस्तोल निवासी सदा सिद्धा बुद्ध दावृद करता अदो उर्द अर्धं अगं ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचेदीय पे दिया नामं अकामं समस्तो पराजी समस्तास्ततामं तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्ये समस्ति निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे

आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानही जे रूप रंग आर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मद भार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु शाहन शाहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूत अंग अबा पंग गतमित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड्य अंडंड बाड्य चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथिस अदिस अदृश अकृस भगवती छंद त्व प्रसाद कथते कि आशिज देस है कि आपिज भेस है कि आगंज करम है कि आभंज भरम है कि आपिज लोक है कि आदित सोक है कि अवधूत वर्ण है कि विभूत करण है कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुझा है कि आशोक वर्ण है कि सर्वा भरण है कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि ब्रह्मंग

के सर्वंग दली हैं, के सर्वत्र मान्य है, के सर्वत्र धान्य है, के सर्वत्र गौन है, के सर्वत्र पौन है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र राजा है, के सर्वत्र साजा है, के सर्वत्र दीन है, के सर्वत्र लीन है, के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राजा है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र पोख है, के सर्वत्र त्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य है, के सर्वत्र जाप्या, के सर्वत्र थाप्या, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीम है, के परमंग फहीम है, के आकल अलाम है, के साहिब कलाम है, के हुसन अल वजू है, तमाम उल रजू है, हमेशुल सलाम है, सलीखत मुदाम है, गनीम उल शिकस्त है, गरीब उल परस्त है, बुलंद उल मकान है, जमीन उल जमान है, तमीज उल तमाम है, रजू अल निदान है, हरीफ उल अजीम है, रजायक यकीन है, अनेक उल तरंग है, अभेद है, अपंग है, अजीज उल निवाज है, गनीम उल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुजुक्त सुधा है, सदैवंग स्वरूप है, अभेदी अनूप है, समस्तोपराज है, सदा सर्वसाज है, समस्तुल सलाम है, सदैवल अकाम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, ओंग आद रूपे अनाद स्वरूप है, अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे सुपंग सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिपुक्त स्वरूप है, अचज है, अशूत है, के नरकंग प्रणास है, पृथ्वीउल प्रवास है, निरुक्त प्रवाह है, सदैव सदा है, विपुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, निरुक्त प्रभा सदा है, विपुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रयुक्त अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, नंग है, अपेख है, लेख है, अपर्म है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनास है, उदास है, अतंध है, अबंध है, अपगत है, विरक्त है, अनास है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अदेख है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है।

कर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं पुक्ता कर्मं सर्वं तर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वा प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विपूते परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता निरसाकं श्रीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वा प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबां है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अभेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अपंग है मदपार छंद त्वा प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन भंग उपमा पार गतमित उदार जल थल अमंड दिस विस भंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आजान बाहु एक सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आजिज न बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट पंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वा प्रसाद करुणालया है अरकालया है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारन है त्रित के धरन है जग के कर्ण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्या है सर्व नास्या है करुणाकर है विश्वंबर है सर्व सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मांडस है खलखंडस है परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं अथपा अथप हैं अकृता कृत हैं अमृता अमृत हैं अमृता अमृत हैं करुणा कृत हैं अकृता कृत हैं धरणी त्रित हैं अमतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत हैं अमृता अमृत हैं अजबा कृत हैं अमृता अमृत हैं नरनायक हैं खलकायक हैं विश्वंबर हैं करुणालय हैं नृपनायक हैं सर्वपायक हैं भाव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने
नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह करता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अचरी छंद अजय अलह अभय अभय अपू अजू अनास अकास, अगंज भांजा लख भख, अकाल दयाल अलेख अभेख, अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे, भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, निरकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विपूते, सदा सचिदानंद सत्रंग प्रणासी, क्रीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब विपूते गजायब गनी में, हरियं करियं क्रीमुल रहीमे, चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भुगते, स्वयंभव सुपंग सर्वदा सर्व जुगते, दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं विपूते, एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं कव्य तव प्रसाद, सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के, देख फिरियो कर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक संत समूह अनेक मत्ती के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूते, एक रति बिन एक रत्ती के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के, गौन को जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली विद न्यावत, सीस न जात विचारे, एते पय तो कहा पय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे, जीत फिर सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही हाय राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत, कौन गने नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के धाम सिधारे, तीर्थ नान दया दमदान, सो संजम नेम अनेक बसेख, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सबान के पेख, पौन आहार जति जत तार, सब सुबिचार हजार क देख, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक ना लेख, शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह, सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, तोर अरीन मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्रीपत श्री भगवान।

दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोर परिवारा, सेवक सिख्य सबै करतारा। मोर अच्छा निज करदै करियै, सब बैरन को आज संगरियै। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख्य हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करी हो रच्छा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दोष

काल पाए कर विषन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जच्छन उपजायो।

बैठा कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अबरचा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवा तो उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस तो जितव सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे।

दृष्ट तन जाहे ने हरि हो, ताके ताप तनक मह हरि हो, रिद सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा छुए सके न कोई,

है। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया, अंतो न पाया किने तेरा, अपना आप तू जान हे जी।

करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही, मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया, भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रह गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै, होवै ता सनमुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै समाले, आप छड सदा रह परने, गुरबिन अवर न जाने कोए, कह नानक सुनो संतो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुरते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थे कोई, पुछो बिबे किया जाए, अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए, कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त न पाए, आवो सिख सत

दीर्घायु उच्च विद्यादि दात गुरसिखी जीवन माता पिता ते वडेरियां दी शुभ आग्या पालन दी सुमत बख्शनी कारोबारां विच बरकतां पौणियां किरत कमाईयां।

तिन जम नेड़ न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने, नानक जिन सतगुर भेटिया रंग रलियां माने। सतगुर दाता आखी है तुस करे पसाओ, हो गुर विटो हो सदवारिया जिन दितड़ा नाओ। सो धन गुरु साबाश है हर दे सनेहा, हो वेख वेख गुरु विगसिया गुर सतगुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी, जिन सुन सिखा गुर मन्या तिन्ना भुख सब जावी। हर का मार्ग आखी को कित बिद जाइए, हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या

प्रियजते वर्षवर्ष प्रियजते मास प्रियजति अर्जा प्रियजते सास नानक लेखे गल हो रहा मैं चकना चाक महला पहला।

सर्वकला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ किव कर अख किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को अख है एक दू एक सियाणा कथना कथी न आवे तोटे कथ कथ कथी कोटि कोट कोटे बद बख्त हम चो बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बगोयद जन तुरा

और नाल रहो तू मन मेरे अंगीकार ओह करे तेरा सबना गल्ला समरथ स्वामी कह नानक मन मेरे साचे साहिबा करता तेरा सब किछ है सदा सिफत सलाह तेरी नाम जिनका मान वसया कह नानक सच्चे साहिब साचा नाम मेरा साच नाम उदार मेरा कर सांत सुख मन आए वसया सदा कुर्बान कीता गुर विठो कह नानक सुन हो संत हो साचा नाम मेरा वाजे पंच शब्द कार सुपागे शब्द वाजे पंच दूत तुद वास कीते तुर कारम पाया तुद जिन को कह नानक तो

उस्तुत है जो हर प्रभ भावे जो गुरमुख प्यारा सेम दे तिन हर फल पावे जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना

0: इतनी ही सेवा प्रवान करनी होया पुला चुका देखिए मैं बच्चा शासन बख्शन हार हो आओ सिख बंदे महान कीर्तनिए सच कान श्री हरिमंदर साहब उन्हों पासों गुरु बाणी कीर्तना जुड़िए दासा पते बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: जे सुख दे तां तुझे आराधी दुख भी तुझे त्याई जे भुख दे तां इत ही राजां दुख विच सूख मनाई। आप संगतां नूं गुरबाणी दा कीर्तन सरवण करा रहे सन भाई गुरविंदर सिंह जी बाबा हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब संगतां वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। कल ही साढ़े कोल जत्था पहुँचिया है तिन्हां नूं जी आया आखदे संगतां वल्लों। हुण समां भाई गुरजीत सिंह जी बैंका हजूरी रागी दरबार साहब तिन्नें दे जत्थे दा है तिन्हां दे जत्थे पासों अमृत बाणी दा कीर्तन सरवण करिए जी। इन्हां तों बाद लड़ीवार भाई गुरदास जी दे कवितां दी कथा सरवण करांगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

सती नहीं पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणबत नानक तिन की सरणा जिन

जैसे दीप दीपत महात्म्य न जाने को बुझत ही अंधकार पटकत रात है, जैसे द्रुम आंगन अछत मेहमान न जाने

बुझत ही अंधकार भटकत रात है। जैसे द्रुम आंगन अछत मेहमाना जाने, कटत ही शाही बैठ वे को बिल लात है। जैसे राजनीति विख चैन होए चतर कुंट, शतर बाला ढाल पे जतर कतर जात है। तैसे गुर सिख साध संगम जुगत जग, अंतरीश पहे पाछे लोग पशुतात है। जैसे राजनीति विख चैन होए चतर कुंट, शतर ढाल पहे जतर कतर जात है। तैसे गुर सिख साध संगम जुगत जग।

0: ना किया मीठा लागे, हर नाम पदारत नानक मांगे। जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गोद विच जुड़ बैठी सात संगत जी, आओ फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं आप जी नू डॉक्टर हरी सिंह जाचक जी दी कविता दिया कुछ सत्रां सुनान लगी हां। जेठ हाड़ दी कड़की तो पंदर, जेठ हाड़ दी कड़की तो पंदर, पैर तरती ते तरिया ना जा रिया सी। लालो लाल सूरज अपने जोश अंदर, लालो लाल सूरज अपने जोश अंदर, उत्तो अग दे गोले वरसा रिया सी, उत्तो अग दे गोले वरसा रिया सी। पंचम पाशा एहो जे समय अंदर, पंचम पाशा एहो जे समय अंदर, तत्ती तवी उत्ते चोकड़ा लारे सी, तत्ती तवी उत्ते चोकड़ा लारे सी। मियां मीर फकीर ने गुरु जी नू, मियां मीर फकीर ने गुरु जी नू आके सीस चुकाया सी। पंचम पिता ते होंदा है जुलम तक के, पंचम पिता ते होंदा है जुलम तक के, आधा मार नारा ते पारी रोंस पकटाया सी। ओना दे पावनावा दे दर्शन करियो जी, वांग शेर दे गरज के कैन लगा, वांग शेर दे गरज के कैन लगा, एना दुष्टा नू सबक सिखा देवा। हुकम करो जे जगत दे पीर मैनू, हुकम करो जे जगत दे पीर मैनू, सबनू कीती दा मजा चुका देवा, सबनू कीती दा मजा चुका देवा। तेरे इको इशारे दे नाल दाता, तेरे इको इशारे दे नाल दाता, तकत मिट्टी विच मिला देवा, तकत मिट्टी विच मिला देवा। सतगुर हसे ते हस के कहन लगे, सतगुर हसे ते हस के कहन लगे, बोते गुस्से च ना आवो पीर जियो, सब कुछ अल्लाह दे पाने विच हो रिया है, सब कुछ अल्लाह दे पाने विच हो रिया है, नैना विच वगाओ ना नीर जियो। नवा रा इबादत दा दसना है, नवा रा इबादत दा दसना है, मिठा मन पाना मिया मीर जियो। करामात दा कहर दा ना हुंदा है, करामात दा कहर दा ना हुंदा है, जो कुछ करना है ओही कर रहा हां। पीने असाने जाम शहादता दे, पीने असाने जाम शहादता दे, इसलिए दुखड़े जर रहे हां। परदा झूठ दा लौन ले सच उतो, परदा झूठ दा लौन ले सच उतो, असा मौत मर जानी नू वर रहे हां। तुसा नीहर मंदर दी तरी हसी, तुसा नीहर मंदर दी तरी हसी, असा नी कुर्बानी दी तर रहे हां, असा नी कुर्बानी दी तर रहे हां। लाल तवी वल वेख के कहन लगे, लाल तवी वल वेख के कहन लगे, एने सिखी दिया शाना नू जन्म देना। तत्ती रेता जो सीस ते पैरी है, तत्ती रेता जो सीस ते पैरी है, एने अनखी जवाला नू जन्म देना। उबल रेहा जो पानी दे गंदर, उबल रेहा जो पानी दे गंदर, एने लखा तूफाना नू जन्म देना। मेरे जिसम ते पए छालिया ने, मेरे जिसम ते पए छालिया ने, मेरी पीरी कृपाना नू जन्म देना, मेरी पीरी कृपाना नू जन्म देना। कविता दे आखरी बंद वाल आ रियां, गौर फरमाना जी। कष्ट सहके कोमल शरीर उत्ते, कष्ट सहके कोमल शरीर उत्ते, पाना मिठा कर मन्या गुरु अर्जन। सीस विच पवा के रेत तत्ती, सीस विच पवा के रेत तत्ती, सिर जुलम दा पणिया गुरु अर्जन, सिर जुलम दा पणिया गुरु अर्जन। ताइयों शहीदा दे सरताज लिखिया, ताइयों शहीदा दे सरताज लिखिया, तवारीक दे पढ़िया गुरु अर्जन। पैदा लखा शहीद फिर होय जाचक, पैदा लखा शहीद फिर होय जाचक, मुड़ जिंदा बंदिया गुरु अर्जन, मुड़ जिंदा बंदिया गुरु अर्जन, मुड़ जिंदा बंदिया गुरु अर्जन। गुर अर्जन विट्टो कुर्बानी शहीदा दे अरताज पंचम पाशा श्री गुरु अर्जन देव जी दी शहादत नु कोटि कोटि प्रणाम जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: तुहाडे बहुत बहुत धन्यवाद, तुसी सानू गुरु अर्जन देव जी बारे ए प्यारी कविता सुनाई। हुण गणीव कौर सानू अपनी कविता सुनाणगे।
2: Thank you so, so much for your kavita about Guru Arjan Dev Sahib Ji. Next, we'll be having Guneev Kaur sharing her kavita as well.
0: Waheguru Ji ka khalsa, Waheguru Ji ki fateh. ਰਹਿ ਕੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਨ ਸਭਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਭਨਾ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਹੀਂ, ਹੋ ਜੇ ਟਕਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਖਾਤਮਾ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਂਭਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਾਹੀਂ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸੇ ਆਤਮਾ, ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਪੀ ਅਤੇ ਤਪੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਓ ਮਹਾਤਮਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਹਿ ਕੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਨ ਸਭਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਧਰਮਾਤਮਾ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਭਨਾ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤਾਹੀਂ, ਹੋ ਜੇ ਟਕਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਖਾਤਮਾ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਾਂਭਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਾਹੀਂ, ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਉਸੇ ਆਤਮਾ, ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਪੀ ਅਤੇ ਤਪੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਓ ਮਹਾਤਮਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।

ठाकुर सिंह जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, धन धन बाबा ठाकुर सिंह जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, सिख दे सी विद्यार्थी जेड़े रहंदे बन परछावां, सांभ संभाल करी बच्चियां दी जिवे कर दियां मावां, आखण लोकी मां जथेरी वड्डी ए कुर्बानी, धन धन बाबा ठाकुर सिंह जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, धन धन बाबा ठाकुर सिंह जी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, जेते पाई नजर सवली

रेडी, हुण एक वारी सारे जाने बैठ जाओ। चौंकड़ी मार के सीधे बैठना। तो हुण असी बेनती करांगे, सो जसकिरन भैन जी सेंटर दे विच जाओगे एंड जेडे बाबा दीप सिंह जी ग्रुप दे बच्चे आ ते जेडे 6 साल दे बच्चे आ हाथ खड़े करियो। सो इफ यू आर इन बाबा दीप सिंह जी ग्रुप एंड इफ यू आर 6 years old, हैंड्स अप। If you're 7 years old, 6 years old, 5 years old, 4 years old, जेडे 7 साल दे, 6 साल दे, 5 साल दे या 4 साल दे बच्चे दरबार च बैठे आ हाथ खड़े करियो। ओके, सो हैंड्स डाउन। जेडे 4 साल दे, 5 साल दे ते सिर्फ 6 साल दे बच्चे ओ हाथ खड़े करियो। ठीक है जी। सो इफ यूर 4, 5 or 6 years old, ओह बच्चे नूं बेनती करांगे तुसी खड़े होके जसकिरन भैन जी दे नाल तुसी गैलरी विखे पहुंचना है। सो जेडे 4 साल दे, 5 साल दे ते 6 साल दे बच्चे ने तुसी खड़े होके गैलरी विच पहुंचो जी। बाकी बच्चे ने बेनती है दरबार च दा बैठी दा, अखां बंद, चौंकड़ी मार के

0: गावन तदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे
1: गावन तदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे
0: गावन तदनो इंद्र इंद्रासन।

0: जन नानक द्वारा सद बल जाइया तेरा हंत न पारा वरिया।
1: राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर अगमा अगम अप।

0: स्लाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता
1: तेरी अनेक कर हर पूजा जी तप ताप जप बेअंता
0: तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत सास जी कर क्रिया खट कर्म करंता
1: से भगत भले जन नानक जी जो पाव है मेरे हर भगवंता
0: आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवरना।

0: विष्णु कृपा करह तिन नाम रतन पाया
1: गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप छोड़िया आप मिलाया
0: सुदर याओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे
1: जीव जंत सब तेरा खेल जोग मिल विचरया संजोगी मेल
0: जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने
1: जिन्हा सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया
0: तू आपे करता तेरा किया सब होए तो दबे

0: हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा।
1: तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा।
0: हमरे दुष्ट सुभाव तुम काव हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो।
1: सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै कर तारा।
0: मोर अच्छा निज करदा करिए, सब बैरन को आज संगरिए।
1: पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा।
0: है छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जोबर चाहो तुम ते पाऊं।
1: सेवक सिख हमारे तारिया है, जो जो सतर हमारे मारिया है।
0: आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया।
1: पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रचा।
0: राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय पे।

0: योगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो
1: जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा
0: जवन काल सब जगत बनायो देव दास जो छन उपजायो
1: आदि अंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा
0: नमस्कार से सीखो हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी
1: शिव कण को सब गुण सुख दियो सतरण को पल मोह बद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत फले बुरे पीर पछानत
1: चीटी ते कुंचर स्थूला सफर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक की पीर पछाने कट कट के बट बट की जाने
0: जब उद करख खुरा कर तारा प्रजा तर तब देह पारा
1: जब कर कर तो कबू तो मैं मित दे कर सबू
0: जेते बदन शिष तब तारा आप अपनी बूझ उचारा
1: तुम सब ही तेरा तन राल में जान भेद भेद अरे आलम
0: निरंकार निरपकार निर्लंब आद नील अनाद असंब
1: काका मूड़े उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा
0: ताको कर पाहन अनुमानित महा मूढ़ कछ भेद न जानत
1: महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव
0: आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णित।

0: तज से तजकीनी उत्पज खान बहु रच दीनी
1: कहू फूल राजा हवा बैठा कहू समट पे शंकर इकैठा
0: शिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप से अंपव
1: अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार असिख संगरो
0: दुष्ट जे उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रणकाता
1: जे स्तुजतम सरनी परे तिनके दुष्ट दुख हवा मरे
0: जवन पग परे त्योहारे तिनके तुम संकट सब तारे
1: जो कल को एक बार त्या है ताके कल निकट न है
0: रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अदृष्ट तरह तत्काला
1: कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक महर हो
0: रेत सेत कर मो सब होई दुष्ट चाह छ सके न कोई
1: एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा
0: जिनर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख तेरा
1: खड़ग केत में सरन तिहारी आप हास दे ले हो उबारी
0: सर्व ठोर मोह सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई
1: कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुबराता।

0: प्रथम मनाओ किसन बिसन कभु नहत्याओ
1: कान सुनै पहचान तिन सो लिवलागी मोरी पग इन सो
0: महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो
1: अपना जान करो रखवार बाहे गए की लाज बिचार
0: अपना जान मुझे प्रतपुरिया चुन चुन सतर हमारे मरिया
1: देख देख जग मैं दो चले राखा मोय और न दले
0: तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहिब मैं दास तिहारा
1: जाने अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज
0: तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा
1: दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे
0: अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा
1: दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संगारो
0: प्रथम तरो भगवत को त्याना बोहर

0: आए प्रभु को पयो जन्मतरा जग आए।
1: अब मैं कथा संक्षेपते सबू कहत सुनाए, कभी बाच दोहरा
0: ठाट पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न आए।
1: आंत चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा,
0: जे जे तुमरे ध्यान को नित उत्त्याय है संत।
1: अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा,
0: काल पुरख की देह मो कोटक।

0: कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजीरा वादाया
0: राग रतन परवार परिया शब्द।

0: क्या है नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह
1: साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया
0: सांध सुख मन आय वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया
1: सदा प्रबान किता गुर बेटो जिस दिया है बड़े आईया
0: कह नानक सुनो संतो।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाय दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दे पाठ दर्शन दीदार जी का त्यांतर के बोलो जी पांच प्यारे चार साहिब जादे चाली मुक्ते समूह संगतां हठियां जपियां तपियां जिन्ना आप जी दा नाम जपिया